0: अभी कहाँ है समाज?
1: With their defense, with their defenseless beat, मिली मेरी बोले राम राम God bless, पीली लाइन मेट्रो से पहुंचे एड्रेस, काफी सारा धुआ जैसे बैठे पंडित, बारहवीं से शुरू बसते में सस्ते नशे, फिर भी अंत पत्र पिलाया 90, डोमिनोज के डब्बे और खाली लाइटर, टूटी बोतलें गुड लक सफाई कर, महफिल के लिए थैंक्स निकले भाई लोग बाइक पर, फिर एक बार पहुंचे IGI पर, जॉनी वाला लेबल मिलने आया फ्लाइट पर, उठाया सूटकेस जोन फ्लिप, ये टाइम का भविष्य की सोच हम करते नहीं, दिमाग में तो अभी तक कल भी नहीं, धीरे धीरे धीरे जैसे धुन चढ़ी, चलाई रात की आखिरी फुल चढ़ी, भविष्य की सोच हम करते नहीं, दिमाग में तो अभी तक कल भी नहीं, धीरे धीरे धीरे जैसे धुन चढ़ी, चलाई रात की आखिरी

0: चाशनी में लन उसकी अंडरआर्म्स की सुगंध तीन चार लुचड़ा फिर आके बंद करो क्या मुझे होश नहीं पसंद।
1: उन्होंने जिस तरह से शुरू किया कि हिंदी ही अश्लील है ये इनकी सोच बताती है बिकॉज अश्लील हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन तो ये चीज को शुरू से ही